0: Indikasi hampir 90 calon siswa yang terbukti atau terindikasi melakukan pelanggaran administrasi selama periode SPMB berlangsung. Menurutnya, keputusan tersebut bukanlah langkah yang mudah, namun tindakan itu harus dilakukan demi menjaga integritas sistem penerimaan murid baru, serta memberikan masa keadilan bagi peserta lain yang telah mengikuti seluruh tahapan sesuai ketentuan. Pahan juga menjelaskan, berdasarkan aturan administrasi kependudukan, satu alamat tempat tinggal memang dimungkinkan memiliki lebih dari satu keluarga.
1: Breaking news. Kita akan mengikuti bersama pernyataan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi di Candi Prambanan Yogyakarta bersama reporter Joshua Sihombing. Joshua.
2: Mahakarya peradaban dunia sekaligus warisan budaya
3: dalam hal yang menjadi kebanggaan cagar budaya Candi Prambanan. Mari kita lihat bersama.
4: Tapi juga kebanggaan dunia.
5: Maninya Bharat ke Pradhan Mantri Shri Narendra Modi Ji, Indonesia aur Bharat ke Pratishtit Pratinidhi, Indonesia mein सभी सदस्य महिलाओं और सज्जनों नमस्कार। आज मुझे माननीय भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ प्रमाणांत मंदिर का दौरा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये विश्व की महान सभ्यता अद्भुत कृति है। दोनों देशों का गर्व है।
4: कुंभ मेले ने मुख्य मकना yang sangat istimewa. Candi Prambanan bukan hanya simbol kejayaan sejarah dan kebudayaan Indonesia, tapi juga menjadi pengingat peradaban yang telah terjalin antara Indonesia dan India selama lebih dari 1000 tahun.
5: ये यात्रा हमारे लिए बहुत ही विशेष महत्व रखती है। प्रम्बानन मंदिर केवल इंडोनेशिया के इतिहास और संस्कृति की महानता का प्रतीक है, बल्कि ये इंडोनेशिया और भारत के बीच वर्ष के अधिक पुराने सभ्यता संबंधों की याद दिलाता है।
4: Hubungan kedua bangsa tidak hanya dibangun melalui kerjasama politik, ekonomi, dan pertahanan, tapi juga berakar kuat pada nilai-nilai budaya, ilmu pengetahuan, dan saling menghormati antara sesama. Jejak sejarah tersebut masih dapat kita lihat dan rasakan hingga hari ini.
5: Hamari dono desho ke simit nahi hai. Ye sambandh sanskritik mulyon, gyan vigyan aur paraspar samanh ki mazboot buniyad par aadharit hai. Samridh itihas ke nishan hum aaj bhi dekh aur mehsoos कर सकते हैं।
4: Candi Prambanan bukan bangunan sejarah, ia adalah simbol peradaban besar Nusantara yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, seni, spiritualitas, dan kemanusiaan.
5: Prambanan mandir sirf एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है
6: सर नुसंतारा
5: बल्कि
6: यंग मंजुंजुंग टिंगी इल्मु पेंगतावान सेनी स्पिरिचुअलिटास डन केमनुस्यान।
5: प्रम्बानन मंदिर सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत ही नहीं है बल्कि ये ज्ञान आद्यतम को भी प्रकट करते हैं।
6: Candi Prambanan juga memiliki makna khusus bagi